0: घड़ी में मुझे तन्हा न करना, मैं तेरी शिफा का उम्मीदवार हूँ मौला, अपने करम से मुझे सेहत अता कर देना।
1: जी बहुत ही खूबसूरत कमाल है ये, बीमारों के लिए शिफाए कामिल की दुआ करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल बीमारियों में मुब्तला है, और हमारी दुआ है रब्बुल आलमीन से हमें अपने ऊपर सच्चा तवक्कुल नसीब फरमा, और अपने बारे में हुस्न ज़ान अच्छा गुमान अता फरमा, और हमें हमारी भलाई की तौफीक दे, और हमारे गुनाहों को दूर फरमा, और हमारे सीनों को खुशादा फरमा, और हमारे हालात को दुरुस्त फरमा, और हमारी उम्मीदें को पूरा फरमा, और हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, और हमारे मरहूमों पर रहम फरमा, और हमारे अमल का खात्मा नेक अमल पर फरमा। ये दुआ है रब्बुल आलमीन से। मैसेज आया है शमशुनिसा चोगली की तरफ से, जो कहती है अस्सलाम वालेकुम सुफिया पा, ट्रस्ट यू वेल। आई लाइक टू विश माई ब्रदर इन लॉ मिस्टर अब्दुल गफूर उमाने अ हैप्पी 70th बर्थडे फॉर टुडे, मे अल्लाह सुबहान तआला ग्रांट हिम गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इंशाल्लाह। एंड दिस कम्स फ्रॉम इकबाल एंड शमशुनिसा चोगली। जी हाँ, आज मदीना इंस्टीट्यूट में मैस मौलूद भी हुआ, और मिलाद रज़ा कादरी जो आए थे साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने डर्बन जॉबर्ग और केपटाउन में शो किए, तो सक्सेसफुल रहा माशाल्लाह। बहुत लोगों ने पसंद किया उनकी आवाज़ को, उनके ट्रैक्स को। तो ये अगला कलाम मिलाद रज़ा कादरी साहब की आवाज़ में मदीने की वाली, और ये इनके लिए है असलम साहब और रुखशाना के लिए जो मदीना जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी जा रहे हैं उनके लिए भी है। मिलाद रज़ा कादरी साहब की

जी हाँ, काबे की रौनक और काबे के मंजर। मैसेज आया है गफूर साहब की तरफ से जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल सिलेक्शन, रियली एंजॉयिंग इट। और हमारी साजिदा अपा भी कह रही, साजिदा बने जो मेरी प्यारी दोस्त हैं, कह रही शी इज रियली एंजॉयिंग द प्रोग्राम। अगला कलाम है साबरी ब्रदर्स की आवाज़ में, सवेरे सवेरे।

जी हाँ, साबरी ब्रदर्स की हम जिक्र करते हैं तो साबरी ब्रदर्स को पहली बार केप टाउन में लाए थे इब्राहिम कास्कर साहब ने. शालीमार गार्डन्स के जो डायरेक्टर है इब्राहिम कास्कर साहब, उन्होंने पहली बार साबरी ब्रदर्स को केप टाउन लाए थे और आई थिंक 1970 में. तो इब्राहिम कास्कर साहब की सालगिरह है 13 अक्टूबर को, उनकी 80वीं सालगिरह है. तो इब्राहिम साहब हमारी तरफ से और रेडियो 786 की तरफ से आपको आपकी 80वीं सालगिरह मुबारक हो. दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह आपको हर आफत से बचाए, आपको कामिल सेहत अता करे और आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, जल्द से जल्द आपकी तकलीफ़ों को दूर करे और अल्लाह सुबहान ताला आपके हर मामले में खैर अता करे और शर से बचाए. ये हमारी दुआ है. और ये मैसेज आता है आपकी खूबसूरत बेगम सकीना कास्कर की तरफ से, आपके सारे बच्चों की तरफ से, दामादों की तरफ से, बेटों की तरफ से, बहुओं की तरफ से और आपके सभी ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से. और ऑफ कोर्स हमारी प्यारी फौजिया और उनके भाई फिरोज़ और शहनाज, आपके सारे भांजे भांजियों की तरफ से, आपकी पूरी कास्कर फैमिली की तरफ से. तो ये अगला कलाम भी मेरे गौसपिया साबरी ब्रदर्स की आवाज़ में.

जी हाँ, इंतजार आपका हम रबर कर लिया। मैसेज आई है मेरी खूबसूरत दोस्त तबस्सुम की तरफ से, जो दुबई से आई है। शी इज़ हियर टू स्पेंड टाइम विद द किड्स एंड अ फैमिली। तो कहती है, सलाम, आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, इट ब्रिंग्स पीस एंड कंटेंटमेंट टू माई हार्ट। मे अल्लाह सुबहान तआला कीप यू ब्लेस्ड इन वर्क यू डूइंग, मेकिंग सो मेनी लिसनर्स हैप्पी। आई लव योर कवाली सिलेक्शन एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई डैड हु यूज्ड टू लव कवाली टू। मे अल्लाह ग्रांट ऑल आवर पेरेंट्स and whom have passed on highest rank in Jannat al-Firdaus, inshallah, ameen. Jazakallah khair, aapki duaon ka, aapke hausla afzai ka. Aur meri pyari dost Aisha Jaffer, jo kafi dinon ke baad mujhe message kar rahi hai, keh rahi hai, assalamu alaikum Sofia Appa, hope you well. Alhamdulillah, happy birthday to my niece Sadika Ahmed for the 1st of October and happy anniversary to Aziza Parker for the 7th of October from Aisha Jaffer and the Jaffer family. Jazakallah khair, love you. Safe home, take care, and may you be in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Ameen. Ya Rabbil Alameen, Jazakallah khair. And she says, she always listens to my program. It's beautiful. Jazakallah khair. Aapki duaon ka, aapki hausla afzai ka. Raat ke takriban 9:40 ho chuke hain. Hamare technician ne hame lal jhandi bata di hai. Aur ya iske baad aap sunenge maa ke upar ek track, Ae Pyari Maa. तेरे आंचल में, फिर मेरे गौस आजम, और फिर सुना है तेरी अदालत में, वो भी शायद AI जनरेटेड होगा ट्रैक, और चांद अफजल कादरी की आवाज़ में एक मनकबत होगी मदद गौस आजम, और सलामी होगी शफाकत अली और राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे टेक्नीशियन शब्बीर जेकब्स का, जो बहुत मेहनत करते हैं और हंसते हुए टेक्निकल बोर्ड पे बहुत खूबी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आप भी इस बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसकी हर मुश्किल को आसान करे और इसको कामयाबी दे। और वो भी उम्रे जाने की सादत रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दे, आमीन। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। किसी ने कहा है कि ये ट्रैक्स AI जनरेटेड होते, ये टेक्नोलॉजी है, हम 20वीं सदी में हैं, जो 1960 में हुआ था अब नहीं हो सकता। तो माफ़ी चाहती हूँ अगर हम जाने अनजाने में हमने किसी को दुखाया हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फी अमानल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।

कभी अकेला छोड़ना नहीं, उसकी आंखों में आंसू आने देना नहीं। जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, फिर बाद में ये मत कहना मौका नहीं मिला। कभी माँ की आवाज को अनसुना मत करना, कभी माँ के दिल को तुम दुखाया मत करना। जिसने तुम्हें चलना सिखाया है

तेरे बिना ये घर घर नहीं लगता, तेरे बिना कोई मौसम अच्छा नहीं लगता, तेरी आवाज सुन लूं तो दिल को चैन मिलता है, तेरा चेहरा देखूं तो हर गम दूर होता।